करेंगे कहां जो प्रभ काज ना अहे इह। इस जीवन नु की करना है जे गुरु दी खुशी ना मिली। सिखी को आके जीवे ता क्या जीवे। सेवा करदे आ सिखी निभांदे आ मौत होवे ता जीवन सफल हो। ए गल भाई मान सिंह ने कही ता माई भागो हाथ विच सांग फड़ी। इस वी लकीर टपी ते ए गल कही भरावो भैन मरद है भैन लड़ेगी वीर घरानू जान। ताना सुनिया सारिया लकीर टपी हुण सलाह कीती ए ढाब सुखी है इत्थे पानी नहीं इत्थे मोर्चे बंदी कर ली है। दुश्मन दे नाल इत्थे दो दो हथ कर लीए ताके गुरु साहब होर अगे चले जान अपना इंतजाम कर ले। ए गल सारिया ने विचार के खिदराणी दी ढाब ते उचियां बेरियां सन उथे वड़ियां वड़ियां चादरां पा दित्तियां ताकि दूरों कोई देखे ते पता लगे कि गुरु दा दल ऐस पासे। खिदराणी दी ढाब तों थोड़ी दूर एक उची टिब्बी ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सिंघा समेत मोर्चा संभाल के बैठ गए। एक सिख दरखत ते चढ़े उसने आवाज दी के वजीर खान फौज लेके आ रहे। भाई मान

गोलियां दी पुछाड़ छड़ी। वजीर खान भी गोलियां दा मीह बरांदा होया खिदराने दी ढाब वल वध्या। इधर गुरु के सिंह उधर वजीर खान ते उहदे सिपाही एक पासे तनखावां लैण वाले जिन्हां जानां भी बचाणियां ने, एक पासे ओ जिन्हां गुरु तों अपनियां जानां वारनियां। लड़ाई शुरू होई, गोलियां चलियां, तीर चले, लाशां ते लाशां डिग रहियां ने, धरती खून दे नाल लाल हो गई। उच्चे टिब्बी ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बैठे ने। दान सिंह कहन लगे, महाराज जापदा है दुश्मन ने हल्ला कर दिता है। ता गुरु साहब जी मुस्कुराते हुए कहन लगे, दान सिंह जे दुश्मन ने हल्ला किया है ता खालसे ने भी बोलबाला कर दिता। कमसान दा युद्ध शुरू हो गया।

कदी कदी ऐसे तीर छड़दे ने जेड़े तीर वजीर खान दे जरनैलां सरदारां नूं लगदे ने ते उन्नू बड़ा भारी नुकसान हो रहा। आखिर लड़दियां लड़दियां 13 सिंह बाकी रह गए। इन्हां 13 सिंघां ने हुण बंदूकां छड़ दित्तियां, कृपाना कढ़ियां, हत्थां विच ढालां फड़ियां, जकारे छड़दे बेरियां दे उल्लों निकले ते दुश्मन दे उत्ते बिजली दी तरह टुट के पै गए। उन्हां सिंघां दा कृपाना सूत के दुश्मन ते टुट के पैना गुरु साहिबां ने

दियो ओज ऐसो हजारन जैसो महा को पठाने गज कीट माने बड़े उत्साहे रण क्षत्र गाहे उछलने छलंगी गुरु के पुचंगी के मेरे पुचंगी मेरे पुत्र छाला मार मार के बड़े उत्साह दे नाल लड़ाई दे मैदान विच नितरे कल्ला कल्ला हजारां ते भारू पिया महा को पठाने गज कीट माने बड़े क्रोध दे विच दुश्मन ते टुट के पए हाथियां नू भी कीड़ियां दे समान समझदे ने बड़े उत्साहे बड़े उत्साह विच लड़दे ने रण क्षत्र गाहे रण कहिंदे ने लड़ाई दा मैदान लड़ाई दे मैदान विच शत्रुआं नू अपने पैरां थले लताड़िया चले वीर सोऊ बड़े उत्साहे परे शस्त्र मारे महा जंग माही कड़े म्यान तेग गहे हथ ढाले चलाकी करन ते सो छाले उछाले म्यान विच तेग कढ़ी हथां विच ढाल फड़ी बड़ी चलाकी दे नाल छाला मारदे वार बचांदे वार करदे ए सिंह दुश्मन दे नाल लड़दे पए साहब जी ने बड़ी सूर वीरता दा नजारा अपनी कलम नाल आप लिखिया कड़े म्यान तेग गहे हथ ढाले चलाकी करन ते सुछाले उछाले आखीर चटापट जुटे लटा लट होए सटापट सुटे कटा कट जोए कटा कुट कटे चटापट मारे खटा खट खोटे हटा हट हारे अखीर लड़दे मरदे ए सिंह भी शहीद हो गए। वजीर खान जद देखिया उसने कि ना कोई तीर चल रहे है ना कोई गोली चल रही है इसने फतेह का डंका बजाया वापस मुड़ गया। हुण भाई मान सिंह मुदड़े मुंह पे है सैंकदा पे है सह टुटदे ने हुण भाई मान सिंह अरदास

जिन्ना बल सी सारा ला दिता है, हुण ते पासा परतन दी भी हिम्मत नहीं, हुण कर कृपा मैनू दर्शन दे, ओ बिदावा पा।

करके दिखाया कि असा था गुरु वास्ते प्राण देने ने और प्राण दिते भी। आओ भाई अरदास करिए सच्चे पिता एहो जिहा जज्बा एहो जिहा उत्साह सानू भी दे तां कि तेरे राह ते चलदे होए सच ते चलदे होए दुनिया दे भले वास्ते जीविए जो तेरा मिशन है। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत दा भला अमृत छकीए बाणी नाल जुड़िए तेरे नाल जुड़िए धर्म वास्ते लड़िए अते अपना जीवन सफल करिए।

0: महायोधेव सर्वांश दानी अमृत के दाते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिन्हें इस दुनिया में आके एक नवा काम किया, जिन्हें दुनिया ने नीच किया छोटे समझिया, उन्होंने अमृत छका के अपने वर्गे बना लिया। अगर कोई चमार अगर कोई चूड़ा भी अमृत छक लवे रहत बैत विच रवे गुरु दे उपदेश ते चले ते गुरु साहब जी कहंदे ने ओ फिर चूड़ा नहीं ओ खालसा है ते खालसा मेरा रूप है। ए है गुरु साहबां दा मिशन सरबत नाल भला करना अणख नाल जीवना धर्म दी रखिया करनी जुलम के सिर नहीं चुकाना सरबत दा भला मंगना।
1: You are listening to Seedtech Radio.
0: Tarmdi rakhya.

मन तन तेरा, तन भी तेरा, तू ठाकुर स्वामी प्रभ मेरा, जियो पिंड सब रास्त मारी तेरा।

ना ही कोई ऐसा ढंग है ते ना ही परमात्मा मेरे मिठे बोलने जेड़े बोल बोल के मैं तेनू अपने आप ते मोहित कर लवा। ऐसा गुण मेरे अंदर कोई भी नहीं है, मैं ते अवगुणा दा भरिया। तकना के परमात्मा रूप कैसा वेखदा, शारीरिक रूप नहीं वेखदा,

कुलवंत है, पतवंता सज्जन है, जिद हिरदे अंदर प्रभु दे नाम दा निवास है। हे परमात्मा, मेरे अंदर ते अवगुण भरे ने गुण ऐसा कोई भी नहीं। हे परमात्मा, आप दी मंग है के बोल मिठे बोल, मैं जद बोलना कौड़ा बोलना, ते मेरा परमात्मा कैसा है, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोर। ओ मिठा बोल बोलदा है ते हुक्म करदा है भाई मिठा बोल बोल, जो बोल बोलने करके किसे दा भला हो, किसे दा मन ना टुटे। हे परमात्मा, जेड़े गुण तेनू चाहिए ने मेरे विच नहीं, इसलिए मैं चंगा नहीं।

राग आसा विच वर्णन कर दिन हे मेरे वाहिगुरु तेरी जो सर्व व्यापक जिथे भी मैं जाना उथे मेनू तू ही तू नजर आना जे मैं कदी मक्के विच जाना ते उथे भी मेनू तू नजर आना ते जे किसे मंदिर विच जाना उथे भी मेनू तू ही नजर आना।

काल पुरख प्रति इस तरह बयान करते हैं, अमले अमल ना अंबड़े, मच्छी नीर ना होए, जिस तरह अमली अमल तो बगैर नहीं जी सकता है। नीर कहंदे ने पानी, मच्छी पानी तो बगैर नहीं जी सकती। इसे तरह हे परमेश्वर, मैं तेरे तो बगैर नहीं जी सकता। धन गुरु नानक साहब का यह पावन शब्द आओ आपां सारे प्यार नाल पढ़िए सुनिए, और जैसा प्यार

सफलियो रुखड़ा अमृत जांका नाव जिस तरह कोई कणा दरखत होवे छां वाला फलां वाला आंदे जांदे राही ते उहदे थले बैठ के आनंद माणदे हन उड़दे होए पंछी भी उस दरखत ते आके बैठते क्योंकि सुख मिलता है ते जिहड़ा साहिब है प्रभु है ए भी एक रुख है पर केड़ा अमृत इस दरखत का नाम है भाव जिस तरह फलां वाले दरखत ते पंछी आके बैठते ने सुख मानते ने इसे तरह जिहड़े प्रभु दे प्यारे ने ओ प्रभु का नाम जप के अमृत रूपी नाम जप के अपना जीवन सवार लेंदे।

हाँ तिन बलहारे जा। पहली गल साहिब एक सफल रुख है पर इदा नाम है अमृत जिन पिया ते त्रिपत पाए ए नाम रूपी अमृत जिन्हें पीता ओ त्रिपत हो गया क्योंकि नाम विच सारे सुख हैं दुनिया दे पदार्थां विच सुख ने एक चीज ले लो दूसरी दी इच्छा पैदा हो जाती आज इतनी माया है गुजारा हो रहा है पर इच्छा है इस तो ज्यादा चाहिए एक चीज कार विच है पर मन दी इच्छा होर वध गई होर चीज चाहिए दुनिया दे पदार्थां दे नाल इंसान कदी रजदा नहीं पर साहब जी कह रहे ने जिन्हां ने अमृत रूपी नाम पी लिया नाम जप लिया उन्हां दे मन दी तृष्णा खत्म हो जाती है ते जिन्हां ने अमृत रूपी नाम पीता साहब जी कहंदे ने हों तिन बलिहारे जाओ मैं उन्हां तों बलिहार जाना।

बस है अभी अनार शब्द जदों भी आप सुनी ओदी एक एक पंक्ति वाल ध्यान देइए ओदी विचार हिरदे विच वसाइए ता मन जेड़ा है ओ फिर भटकेगा नहीं। हर इंसान परमेश्वर की निगाह विच है क्योंकि परमेश्वर सारे दे नाल वसदा है ओदी निगाह तों कोई दूर नहीं हो सकता।

ओ साहिब मैं रास। श्री गुरु नानक देव जी महाराज बयान करते ने, ऐ परमेश्वर मैं तेरा बाणिया हां, तू मेरा साहिब है। साध संगत, आज दे इंसान कोल चार पैसे आ जा, कोई थोड़ी बहुत ताकत होवे, वह समझदा कि मेरे वर्गा हुण कोई नहीं। यह जड़ी मैं है, एहो इंसान नूं चैन नाल नहीं बैठन देंदे। अज हर इंसान दुखी है, चाहे वह गरीब है, अमीर है, कोई राजनीतिक है, और यह भी देखे है कई धर्मी भी दुखी ने, क्योंकि नाम रखवाण दे नाल कोई धर्मी नहीं हो जाता। जदों तक मन विचों हउमै नहीं जाती, उदों तक इंसान सुखी नहीं हो सकता। हउमै की है? मैं जो कहना ठीक है, जो मैं कह रहा वो ठीक है, जो मैं कर रहा वो ठीक है, बस ये मैं इंसान नूं जीवन नहीं दिंदी। घरां विच भी सुख नहीं, घरां विच भी मैं है, भरा भरा दा प्यार नहीं, प्यो पुत्र दा प्यार नहीं, पत्नी पत्नी दा, पत्नी और पति दा रिश्ता बड़ा गूढ़ा संबंध है, पर कई बार इन्हां विच भी प्यार नहीं रहिंदा, क्योंकि जिथे हउमै और माया आ जावे उत्थों प्यार उठ जांदा है। और हउमै तां आंदी है जदों इंसान परमेश्वर नूं भुला दे। गुरु नानक साहब गुरु होके, गुरु होने का मन विच माण नहीं, कहिंदे ने ऐ परमेश्वर मैं तेरा नौकर हां, तू मैनू नाम दी रास दिती है। जिस तरह कोई सेठ अपने नौकर नूं दुकान ते बिठावे ते आखे लै तू हुण सौदा वेच, ते साहिब जी कहिंदे ने अकाल पुरख मैं भी तेरा नौकर हां, तू मैनू नाम दिता है कि ऐ नानक तू मेरा नाम दुनिया विच वंड, भाव मेरा नाम लोकां नूं जपा और मेरे नाल जोड़। ते साहिब जी कह रहे ने अकाल पुरख मैं तेरा नौकर हां, मैं तेरा गुलाम हां, मैं तेरे नाम दा ढंडोरा दुनिया नूं दे रहा तां कि लोग सुखी हो सकन, पापां तों झूठ तों ओ बच सकन।

हाँ वारी बन जा खनिए बन जा तो साहिब के नावे ऐ परमेश्वर मैं तेरे तू वारी तेरे नाम तू कुर्बान जाना तन गुरु नानक साहब जी बयान कर दे हैं आओ अपनिया बिरतियां उस पास ले चली गुरु नानक साहब जी पिता मेहता कालू जी धन गुरु नानक साहब का राह पै तक दे बेबे नानकी गुरु नानक साहब के वड्डे भैन जी आए अपने पिता मेहता कालू नू मिले नाल बेबे नानकी दे पति

अपनी माता माता तृप्ता नु गले लग के मिले तेनू गल ना लगाया ता माता तृप्ता जी एकदम रोना निकल गया ते नाले कहन लगे दिए हुण ते बड़ा चिर हो गया नानक नु देखे तू आई है कुछ भरोसा होया मन नु कि तेरा वीर मेरा सपुत्र गुरु नानक भी आवेगा। दूसरे पासे भाई अजय राव अपने सौरा साहब मेहता कालू जी दे पैरां ते मत्था टेके मेहता जी ने प्यार दिता ते भाई अजय राम जी भी पुछदे ने पिता जी गुरु नानक साहब हाली नहीं आए असी ते इस आस ते आए हां कि इस वरी जरूर महाराज जी दर्शन होणगे। भाई अजय राम रिश्ते दे विच गुरु नानक साहब दे भाईया लगदे ने जिन्हां नूं आपां जीजा भी कहने पर ओ रिश्तेदारी काटू

माता तृप्ता जी, गुरु नानक साहब ने कहन लगे बेटा नानक जाओ हुण अपनी वड्डी भैण नू मिलो, बड़ी वैराग विच है धन गुरु नानक साहब। माता नू मिल के बेबे नानकी जी नू मिलन वास्ते उठे ता बेबे नानकी छत तू थले उतरे, भज के आए चरणा ते मत्था टेकन वास्ते, पर गुरु नानक साहब ने बाहां फड़ लिया। कहन लगे ना भैन तुसी वड्डे हो, भैणा भरावां दे पैरां ते मत्था टेकन ये नहीं हो सकता। सत्संग ये इतिहास ये कथा कहानियां सुनाण दा एक मकसद है। ये कथा कहानियां बाणी तां सुनाई जांदी है ताकि साढ़े मना विच साढ़े हिरदे विच प्यार होवे। जे साढ़े हिरदे विच प्यार होवेगा साढ़े घर विच भी प्यार होवेगा। जिहदे हिरदे विच प्यार नहीं, जिहदे दिल विच प्यार नहीं, वो किसे नूं की प्यार देवेगा। चंगा इंसान बनन वास्ते चंगा पिता बनना जरूरी है, चंगा पति बनना जरूरी है, चंगा पुत्र बनना जरूरी है, चंगा भरा चंगा सज्जन मित्र चंगा शहरी बनना जरूरी है। जेड़ा चंगा पति ना बन सके, चंगा पिता ना बन सके, जेड़ा चंगा पुत्र ना बन सके, जेड़ा चंगा भरा चंगा सज्जन मित्र चंगा शहरी ना बन सके, साध संगत ओ चंगा इंसान कदी नहीं हो सकता। ओ ना सिख हो सकता है, ओ ना मुसलमान, ना हिंदू, ना ईसाई, वो किसी गिनती विच नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान

दुनिया विच जा रहे हैं बंदगी कर सिमरन कर और दुनिया नू स्वर्ग बना सचखंड बना। एक कथा कहानियां सुननिया अपने महापुरुषों के जीवन वाल देखना है। वो पति भी ने पुत्र भी ने वो भरा भी ने वो सज्जन मित्र भी ने वो गुरु भी ने वो पीर भी ने उन्होंने दुनिया नू प्यार वंडिया। ते आओ ये कथा कहानियां सुन के असि भी अपने मना विच प्यार रखे साढ़े मन विच प्यार होवेगा अपने घरदियां नू प्यार देंगे लोकां नू प्यार देंगे ते फिर स्वर्ग लभण दी लोड़ नहीं। ये दुनिया ही स्वर्ग बन जाएगी।

जद इतने बचन कहे भैन जी है बेबे नानकी तुसी वड़े हो तुसी मेरे पैरा ते मत्था टेको ते नहीं हो सकता साथ संगत एक एक लफज विचों साढ़े जीवन वास्ते सिख्या है ते वक्री गल है इना गल्ला नू कोई मन्ने पावे ना मन्ने पर सुख ता मनण विच ही है हुण तां गुरु नानक साहब ने भाई मरदाने नू किया मरदाने आ हुण तुसी जाके भाई अजय राम जी नू लैके आओ शहर वासियां नू पता लग गया सी दीपमाला उस वेले शुरू हो गई कि धन गुरु नानक साहब का अज जन्मदिन मनाने का सुभाग प्राप्त हो रहा है पर कुछ देर बाद धन गुरु नानक साहब आप उठे ता पिता मेहता कालू जी पूछते ने बेटा कित्थे चले साहब जी कहन लगे मरदाना भाई अजय राम नू वैराग विच उठा नहीं सके धन गुरु नानक साहब आप उस जगह पहुंचे जिथे भाई अजय राम जी वैराग विच बैठे शब्द गा रहे सन अगे भाई मरदाना कोल बैठे शब्द पढ़ रहे और वार वार कह रहे सन जय राम जी उठो धन गुरु नानक साहब आ गए ने पर भाई अजय राम जी वैराग विचों उठ ना सके क्योंकि ये प्यार भागा नाल मिलता है और इस प्यार नू ओह ही जानता है जिसने ये प्यार किया भगत कबीर जी कहंदे सो कत जाने पीर पर आई जाके अंतर दर्द ना पाई भगत रविदास और भगत कबीर साहब दोनों दे शब्द पढ़िए एको ही गल नजर आती भगत रविदास वो भी मन की तड़प दसते ने और भगत कबीर साहब जी कहते ने लागी होए सो जाने वीर राम भगत अणियाले दी कि यह प्रेमा भगती दे तीर जड़े ने जिन्हों लग जा जिन्हों तीर लगते ने ओ ही जाने

रखियो ग्रे पीतरो उठ उहाँ को दौड़ो आज्ञा में भूख सोई कर सुख सोग हरख नहीं जाने हो।

तू ये करता रहा, कोई नहीं मैं ब्याह करा लवा, मैं आया करांगा। बाल बच्चेदार हो गया, बच्चों का ख्याल पै गया। जरा तू वड्डा हो गया बच्चा, ते तू यही कहता रहा जी हुण जरा उहदी निगरानी का बहुत ख्याल रखना पैंदा है, किते विगड़ ना जावे। जिसने जवान हो गया तुसा किया भगत जी हुण तां जरूर आया करांगे, दा काके दा व्याह कर दी। काका भी व्याहया गया, ते फिर एक रीझा कि बस कोई नहीं, वह हुण नवा नवा व्याहया है, वह अपने मौज मेले में आए, थोड़े दिनों नूं अपना कम कार संभाल लवेगा, ते फिर मैं आना ही करना, होर करना की, तुहाडे कोल ही आना, होर कित्थे जाणा। ओ भी समा भलिया लोका लंघ गया। फिर एक ऐसा समा भी आया, मुड़के तेनू क्या भगता हुण तां आ जाया कर, हुण तां मुंडा बाल बच्चेदार हो गया। कहिंदा जी की करा, मुंडा तां बाल बच्चेदार हो गया, उहदे बाल बच्चे हुण मैनू नहीं छड्डदे, हुण उहदे बाल बच्चे नहीं छड्डदे, पहला अपने बाल बच्चे, फिर मुंडे दे बाल बच्चे, कारोबार, ए सारे झंझट जीवन लंघदा लंघ गया। अखीर एक दिन ए शरीर तो छुट्टी कर गया, लेकिन उस घर नूं ना छड्ड सकिया, उहदे च बिरती पैंदी रही। इस दे नाल मिलदियां जुलदियां कितनियां ही साखियां, कहिंदे ने इस घर नूं कदे कुत्ता बन के चंबड़िया, कदे उस नाली विच कीड़ा बन के फिरदा रहा, कदे उस घर दी रखवाली विच नाग बन के फिरदा रहा, कदे उस घर दा बोझ ढोण वास्ते खोता बन के फिरदा रहा, उस घर नूं नहीं छड्ड सकिया, उस घर दा मोह नहीं छड्ड सकिया, मर गया, जूना च पैंदा रहा, जूना च भटकदा रहा। कबीर जी पछाणदे ने, कहिंदे ने तू ओही तां नहीं, तू ओही जापना है जिस नूं कहिंदे सा भगती कर ले, भगती कर लैंदा ते मुड़ के तैनूं आ बैल दी जूनी ना पैणा पै। भगत जी उहदा नक्शा भी खिंचदे, उहदे जीवन दा जो नजारा बणिया उह भी दिखा रहे ने सानूं। कहिंदे ने चार पांव जदों तेरे दो पैर सन, तू खड़ा सा इहनां दो पैरां ते, पैर दो सन खड़ा सा सिद्धा, ते सिद्धा खड़ा होके तू बड़ा कुछ सोच सकदा सा, इहनां चारां पैरां ते खड़ा होके तू हुण कुछ नहीं सोच सकदा, तेरी सोचन करन दी समर्था सीमित हो गई। उदों तू सोच सकदा सा मगर तू ना सोचिया, पशुआं वाला जीवन ही बिताया, पेट भरियो पशुआ जो सोयो, मनुख जन्म है हारियो। हुण तेरे चार पैर ने, हुण तू की सोचेगा। बल्कि जीवन दे विच भी कई बार ऐसा हुंदा है कि मनुख लै के ख्याल बैठा है, कोई नहीं कर लेने, इस मामले च ढिल वरता के बैठा। भगती दे मामले च कई बार बंदा प्रोग्राम भी बनाउंदा रह जांदा, और आम तौर ते भर जवानी विच, लड़कपन विच, बचपन विच, बाल बच्चेदारी दे समय विच, अधखड़ उम्र विच मनुख ऐसा सोचदा रहिंदा, बस हुण शुरू कर देना, हुण बस कर ही देना है शुरू, थोड़े दिनां नूं ना भगती दा काम शुरू कर देना, हुण नितनेम शुरू कर देना, हुण गुरुद्वारे जाना शुरू कर देना। और सच करके जानना, जिहड़ा बंदा प्रोग्राम बनाउंदा रहिंदा ना, कदे कुछ नहीं कर सकदा। करदा केवल उह है जिहड़ा शुरू कर देता, जिसने शुरू नहीं किया केवल व्योता बना रहा, उहदा कदे कुछ नहीं बनता। व्योत करे ते नाल ही शुरू कर दे, जिसने शुरू नहीं किया वह कदे सिरे नहीं लगता। तुसा वेखिया कोई भी पैंडा करना हो, एक कदम तुसी चुकदे हो ते वह पैंडा मुक जांदा, लेकिन जिस बंदे ने कदम नहीं ना चुकिया, वह पहला कदम, हालांकि जिहड़ा मंजिल ते पहुंचने वाला कदम है, वह बड़ा महत्वपूर्ण जापदा। मंजिल ते पहुंच गए, यह कदम अखीरला कदम बड़ा महत्वपूर्ण जापदा, लेकिन नहीं, जिहड़ा पहला कदम है उहदा बड़ा महत्व। जे पहला कदम ना चुकिया जांदा ते आखिरी कदम भी कदे नसीब ना हुंदा। वह पहला कदम यह है कि मनुख नूं बचपन तो बचपन च, छोटे तो छोटी अवस्था दे विच, बड़े सियाने सूझ वाले मां बाप वह ने जेडे आप गुरु भगती च, प्रभु भगती च लगे ने, ते बच्चियां नूं प्रेर के गुरुद्वारे ले आउंदे ने, नितनेम कराउंदे ने, गुटका फड़ा के पाठ कराउंदे ने, छोटे तो छोटी उम्र विच उहनां नूं गुरु नाल जोड़न दा जतन करदे। लेकिन खिमा करना, बच्चियां नूं गुरु नाल जोड़न दा जतन केवल वह करेगा जिहदी अपनी जिंदगी विच, अपने जीवन विच जिहदे एक रूटीन, एक जुगत बनी हुई है कि वह पाठ करदा। जे बाप बच्चे नूं कहिंदा पाठ करिया कर, ते आप नहीं करदा, बच्चा कदे नहीं करेगा। बाप कहिंदा चल गुरुद्वारे चलीए, जे तां आप तुर रहा है ते बच्चा भी नाल तुर पेगा, ते जे बाप लेटिया लेटिया कहे काका जा गुरुद्वारे होगा, ते बच्चा उत्थों तां तुर पेगा, राह जगा पिछा हो जाएगा। जवाब ना भी देवे, कहेगा बापू आप तां जांदा नहीं, मैनू कहिंदा नहीं पहुंच सकेगा। आप बंदा करे, आप शुभ रस्ते ते, आप शुभ मार्ग ते कदम धरे, ते बच्चियां नूं छोटी तो छोटी उम्र च इस पासे प्रेर के ला, ते जिहड़ा बंदा व्यौंता करदा रह जावे, कर लैने अगले साल करांगे, उदो अगले साल करांगे, इन्ने सालां दे हो जाइए फिर करांगे, कोई नहीं कर सकदा। ओ पुराने ऋषियां ने कुछ व्यौंता

आप अपनी बाणी विच लिखते हैं कि साच कहो सुनते हो सब दुनिया दे लोगो एक वास्ते नहीं ये उपदेश सारे संसार नूं ये सांझा और भाईचारे का उपदेश है। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह कहते हैं साच कहो सुन ले लो सब है सारे सुन लो साच कहो सुन ले

अपनी लज्जा बचाउन वास्ते प्रभु नु याद कीता, एक मन एक चित होके त्याया उसनु। ता फिर जो परमेश्वर दा नाम जपदे हन उना दी लज्जा वाहेगुरु आप रखदा। सात संगत बोलो श्री। तीसरे प्रमाण विच भाई साहब कहंदे हन, ओ गरीब ब्राह्मण सुदामा जो मित्र सी भगवान श्री कृष्ण जी दा, जदों थोड़े जिहे चावल लैके द्वारकापुरी पहुंचिया तां उसके बदले भगवान श्री कृष्ण जी ने उस भेटा दे और सुदामे दे प्यार दे सदके उसनू दुनिया दा बेअंत धन बख्श दिता। सुदामे नू नौ नीतियां 18 सिद्धियां दे दी।

जमरौत दी जंग विच सिखा ने पठाना नू ऐसी मार मारी कि पठान कन्ना नू हथ ला तौबा तौबा कर उठे। कावल दियां गलियां बाजारां विच नलवे दियां गल्लां होण लगियां। नलवे तो डरदे पठान सूरज डुबदे सार घरां नू जंदरे ला अंदरी लुक जांदे। चार चुफेरे मरियां वर्गी चुप छा जांदी। अपने रोंदे न्यारियां नू चुप कराउण लई पठानियां इउं डराउंदियां।

0: सिख राज दिया हद्दा, दिनों दिन काबल वालू वद्दिया देख, पठार सोची डूब गए।
1: अमीर काबल दोस्त मोहम्मद खां घबरा गया।
0: सरदार हरी सिंह नलुए दी चढ़त, पठाना नू अपनी मौत दिसन लगी।
1: कई हजार मुल्किया कट्ठा कर शमी खान ने अपने दादे परदादे दी बहादरी दे वास्ते पौंदिया इंज आखिया।

0: 28 अप्रैल 1837 दा सूरज चढ़दिया ही 1000 सिंघा ने पठाना नू जा ललकारिया। सत श्री अकाल दे जयकारिया नाल आसमान गूंज उठिया, तलवारा पिड़िया,
1: धरती लहू लुहान हो गई,
0: लोथा ते लोथा चढ़ गईया। गुरु दे सिंघा ने ऐसे हद दिखाए कि गाजियां दे दंद जुड़ गए। दूजे दिन तोपां दे गोले दागे, रात पैंदिया ही जमरौद किले दी सज्जी कंध विच पाड़ पै गया।
1: हुण महासिंह अग्गे तीन काम सन, किले दी राखी करना, कंध दा पाड़ पूरना, ते पिशोर बीमार पए सरदार हरी सिंह नलुए नू सुनेहा पहुंचाना।
0: सिंघा दे रोक दिया रोक दिया, बीबी हरशरण कौर जत्थेदार तो चिट्ठी लै पेश बदल, किले विचों निकल तुरी। रातो रात पेंडा मुका, पिशौर च सरदार हरी सिंह नलुए नू जा चिट्ठी पुचाई। पढ़ के सरदार दिया अखा विच खून उतर आया, डौले फरके तलवार दे मुठे ते हथ गया। ऐ सोच के कि मेरी जिंदगी ही सिख राज दी जिंदगी है, ओ उठ बैठा। खालसे दी तलवार आज हिंदुस्तान दा इतिहास बदल सकती है। मैं जान नालों सिखी शान नू प्यारी समझदा हां। ऐ सोच दिया ही चट सिंघा नू इकट्ठे कर सरदार हरी सिंह नलुए ने इंज ललकारिया।

नगाड़े ते चोट लगी, खंडे तलवारा ते बर्छे लिशके, केसरी निशान चूले, कोड़िया दे पौड़ा नाल, पहाड़िया गूंज उठिया। दस कु हजार सिंघा ने जमरौद वालू कूच कर दिता। सरदार हरी सिंह नलुए ने इंज ललकारिया।

0: अप्रैल 1837 का सूरज चढ़दिया ही सरदार हरि सिंह नलुए ने सिख फौजा समेत बोले सो निहाल दा जयकारा गजा शम्मी खां दी फौज दा जा टाकरा कीता। तलवारा बरछिया विच्चों मौत दे चंग्यारे निकले, लोथा नू लिताड़ दे सिंगा दे कोड़े अगे वदन लगे, मनुखी सिर मतीरिया वांग पैरा विच रुलन लगे।
1: धरती लाल सूही हो गई। सरदार हरि सिंह नलुआ ते शम्मी खान मैदाने जंग विच एक दूजे नू एउं टकरे

0: सरदार हरी सिंह ने फट नू कुट के बन लिया, कोड़े नू जमरौद किले वालू मोड़ दिता। किले विच पहुंच दिया ही जत्थेदार महा सिंह ने नलुए सरदार नू कोड़े तोला पलंग उत्ते लिटा दिता। तकलीफ वध दी गई,
1: अद्धी रातों शरीर निढाल हो गया, जान साथ छड़न लगी, पर सरदार दे मुख ते लाली उसे तरह डलक रही सी, अजे भी सज्जा हाथ तलवार दी मुठ उते ही सी।
0: मैदानों परत के आए सिंगा तो लड़ाई दा हाल पुछया, जित दी खबर सुन गज के जयकारा बुलाया।
1: ते फेर सारे सिंगा वाल तक सरदार हरी सिंह नलुए ने हौसला दिंदे आखिया,
2: खालसा जी, मैनू अकाल पुरख दा सद्दा आ गया है। मैं पंथ वास्ते जमया सी, ते पंथ वास्ते शहीद हो रिया, मेरे पिछों घबराउना नहीं, तुसी खालसा राज दे राखे हो, खालसा जी जित्ता जारी रखनिया, पठान मुड़ के हिंदुस्तान वल मुंह ना कर सकन।
1: एह कहंदिया ही सरदार हरी सिंह नलुए ने अंतम सुनेहा इंज दित्ता।

देव जी, नाम जपदिया जपदिया ऐसी बिरती आपदी ब्रह्म ज्ञानियां दी अवस्था प्राप्त हुई के ठाकरां दे इशनान करन लई जल परन गए ते मन विच ख्याल आया भई 42 लख जी जल में होते बीठल पैदा काहे करो। 42 लख जून जल विच है, 42 लख जून इस तरत आकाश ते है, हुन बीठल नू मैं वखरा किवें भोग लवावां। हे भगवान, हे ईश्वर, हे वाहिगुरु, जिथे किथे तू ही तू है, कोई दूसरा नजर ही नहीं आउंदा।

कितने भी चंगे कर्म कर लवे, ओदे कर्म कीते हुए सारे निष्फल चले जांदे। जिमें कि 18

बहुत प्रसाद करावे पाठ करावे, पर जे निंदा हो गई ओ भी किसी महापुरख दी। ते कोई भी कीता होया कर्म फलीभूत नहीं हुंदा। जेड़ा मनुख इस भयंकर रोग विच फसे है

गुरु अर्जन देव जी अपने शब्द विच फरमान कर देंगे। निंदक दी ए निशानी है, जदों किसे दा भला हुंदा होया वेखेगा ते दुखी होएगा, ते जदों किसे दा बुरा हुंदा वेखेगा उदों प्रसन्नता विच आंदे, खुशी विच आंदे। वड्डी निशानी निंदक दी ए वे, हजूर कहंदे ने

गुरु प्यारियो, आप जी ने हुने हुने ही गुरबाणी का आनंद माणिया है। असी आप जी का ध्यान एक जरूरी गल वाल दिवाना चाहते हुए बेनती करते हाँ कि जे आप जी घर विच परिवार विच ते बच्चे नाल गलबात पंजाबी विच करते हो तो आप धनता जो हो, जे कुछ कसर है तो अज तो इस पासे खास ध्यान दो। बच्चियां पास पंजाबी विच गलबात करन दा समा केवल घर विच ही है, स्कूल विच, दोस्तों विच, घर दे नौकरां चाकरां नाल तां इह समा उहनां नूं मिल ही नहीं सकदा। जरा सोचो, जे बच्चे पंजाबी बोल ते समझ नहीं सकनगे तां गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ करना ते समझना तां इक पासे रिहा, उह गुरुद्वारे जाके की लाभ प्राप्त कर सकनगे? गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी नाल संबंध किवें जोड़नगे? अपना जन्म किवें सफल कर सकनगे? हो सकता है आप जी ने इस पासे कदी ध्यान ना दिता होवे। असी तां उस ताते दा सुनेहा आप पास पहुंचा रहे हां। जे कुछ ऊंटाई है तां ध्यान दिओ ते उह पूरी करो। आप जितनिया वध तो वध जवाना बच्चियां नूं पढ़ाओ अच्छा है, पर पंजाबी तां सिखी दा मुढ़ अथवा फर्स्ट स्टैप है, सिखी दा धुरा है। एक अंग्रेज मुदब्बर ने ठीक ही तां कहा सी कि जिस कौम नूं कमजोर करना होवे उसकी बोली खो लवो, पर असी तां अपने पैरां ते आप ही कुहाड़ा मार रहे हां। जदों गुरु नानक देव जी दा प्रकाश होया तां मुगल राज दा समां सी, हिंदी जनता कमजोर ते निटाल हो चुकी सी। महाराज जी ने इस कौम घातक वातावरण नूं पाब कीता ते बाणी विच फरमाया, घर घर मियां सबना जियां बोली अवर तुम्हारी। इह हिंदी जनता नूं हलूणा सी कि तुसीं अपना धर्म ईमान छड के मलेच्छां दियां मर्यादा अपना के घर घर मियां बने हुए हो ते अपनी बोली भी त्याग दित्ती है। सो गुरु प्यारियो, अपना फर्ज पछाणो। केवल अपना घर ही नहीं बल्कि अपने होर सज्जना मित्रां नूं भी इह सुनेहा दे के गुरु दियां खुशियां प्राप्त करो ते पंजाबी बोलन ते पंजाबी पढ़न लई संगतां नूं सुचेत करो। अगों दाते दा अपना काम है, आप ही सहाय होएगा। फिर लोग सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

0: दुख जाए पौड़ी।
1: सेव कीती संतोखी जिन सचो सच त्याया, उन्हें मंदे पैर रखियो कर सुकृत धर्म कमाया। उन्हें दुनिया तोड़े बंदना अनपाणी थोड़ा खाया।

जंत पाए कै संभाले सवना जिन करते करना किया चिंता विकरणीता सो करता चिंता करे जिन अपाया जग तिस जुहारी सत।

सासत सिमृत वेद चार मुखागर बिचुरे तपे तपी सर जोगिया तीर्थ गवन करे खटकर माते दुगुणे पूजा करता नाए रंग न लगी पार ब्रह्मता सर पर नरके जान राज मिलख।

पता नहीं सी कि इस तरह परमेश्वर दा सदा आ जाएगा। साहब जी कहते ने इंसान हर काम महूरत देख के करता है। घर बनाना होवे घर बन जावे, ग्रह प्रवेश करना होवे जां कोई ब्याह होवे, कोई भी खुशी दा काम होवे ता इंसान सारिया तो पहला दिन देखदा है, तारीख देखदा है, महीना देखदा है, साल देखदा है, मुहूर्त देखदा है। एक काम इस महीने इस तारीख नू करना है, इस वेले करना है, ताकि सारिया नू बुला लवा, किधरे कोई नाराज ना हो जावे कि मैनू नहीं बुलाया। गुरु साहब जी कहते ने इंसान तू हर काम महूरत ते कीता, दिन देख के कीता, साल देख के कीता, पर मरण लगिया तू कोई महूरत ना देखिया, कोई तरीक ना देखी, ए ना सोचिया इस दिन इस तारीख नू इस महीने इस मुहूर्त नू मरा सारिया नू दस दया ताकि कोई नाराज ना हो जाए कि मैनू नहीं बुलाया। साहब जी कहते ने इंसान हर काम तू मुहूर्त दे कर सकदा है, पर जड़ी मौत है ये मुहूर्त नहीं देखन देंदी। मरण ना मुहूर्त पुछया, पुछी थित ना वार, मौत ने ना दिन देखन देता, ना तरीक देखन देती, ना कोई महीना देखन देता। बस इन्ना ही पता लगा चंगा भला सारे परिवार नू मिलके घरों तुरे कि मैं चलदा आ जावांगा वापस, घरों ते तुर पिया, परिवार नू मिलके बड़ा खुश है। पर की पता सी कि जांदियां जांदियां रस्ते विच ही परमेश्वर दा हुक्म आ जाना है। घर वाले कारू डीकदे पए ने, आ जाणगे शाम नू मेल हो जाएगा, पर क्या पता सी उस दा वापस नहीं आना, पर उहदी मौत दा सुनेहा जरूर आ गया। रस्ते विच जांदे हैं हुक्म आ गया परमेश्वर दा, आया हुक्म पार ब्रह्म का, उस अल्लाह उस पार ब्रह्म दा हुक्म आ गया। जांदियां जांदियां रस्ते विच ही हुक्म आया मौत हो गई। साहब जी कहंदे ने बड़ा कुछ बनाया, हाली मन दे चाह भी पूरे ना होए, पर जद हुक्म आया तां छोड़ चलिया। एक दिहाड़े जो कुछ बनाया सी सारा कुछ एक दिन छड़ के तुर पिया, ना पत्नी दा ख्याल, ना बच्चियां दा, ना रिश्तेदारां दा, ना सजना मित्रां दा कि आखरी वेले किसे नूं मिल ही लवां। नहीं, परमेश्वर दा हुक्म बड़ा डाढा है, जद उहदा हुक्म आवे फिर किसे नूं मिलण दा समा नहीं मिलदा। हुक्म बड़ा डाढा है, आया हुक्म पार ब्रह्म का, छोड़ चलिया एक दिहाड़े। हुक्म आया और एक दिन सब कुछ छड़ के इस दुनिया तू अपने प्यारियां नू रोंदा कुरलांदा छड़ के तुर पिया।

अराज मिलक जोबन ग्रह शोभा रूपवंत जवानी जान वाला सब कुछ छड़ गया राज भाग जोबन जवानी ग्रह कहते ने कारण अपना कार शोभा सोना रूप सारा कुछ छड़ के एक दिन तुर पिया बहुत दर्ब हस्ती यार कोड़े लाल लाख बयानी हाथी कोड़े समय दी सवारी हर चीज एक दिन छड़ के जो बड़े चा नाल बनाई एक दिन तुर पिया।

बंके कहंदे ने पति जिन्ना दे पति मर गए जिन्ना वापस नहीं आना उन्हां औरतां दे बारे साहब जी कहंदे ने तिन क्यों रहण विहाणी उन्हां दियां रातां हुण किवें बीतन क्यों औलाद किन्नी भी नेक होवे रिश्तेदार किन्ने भी चंगे होण पर पति दी थां कोई नहीं लै सकदा। साहब जी बाणी विच बयान करदे ने ਉਹ ਪਤਨੀ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਵੇ ਜਿਹਦਾ ਪਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

कदी हसो ना, क्यों? मौत एक सच्चाई है, जीवन झूठ है। असी लोग मौत नू भुला देने हैं, पर मौत इंसान नू कदी नहीं भुलदी। समय नाल ओ आके ले जांदी, क्योंकि उदा हुक्म बड़ा डाढ़ा। पति ना रवे ते औरत दा जीवन कहो जे है, तन गुरु नानक साहब बाणी विच बयान करदे ने। औरत दे दर्द नू समझिया, अपने आप नू फिर कहन लगे, ऐ परमेश्वर, ऐ अकाल पुरख, तू मेरा पति है। जिवें औरत दा जीवन पति तो बगैर कुछ नहीं, तू मेरा पति है, तेरे बगैर मेरा जीवन

इस वास्ते के है कि मां बाप नियामत ने विछोड़ा किसे दा भी पवे विछोड़ा सहना बड़ा औखा है। मां मरे प्यो मरे पुत्र मरे पत्नी मरे चाहे पति मरे पर साहब जी कहंदे ने ए भी सच है मरना जरूर है ए भी सच है कि दुख सहना बड़ा औखा है। इसे वास्ते ए बाणी दिती है कि परमेश्वर दा सिमरन करो दुनिया नू नाशवान समझो ताकि इस दुख नू तुसी सह सको ए समझ सको ए हुकम सी जिड़ा आया है उन्हें जाना जरूर है। एक दिन असी भी जाना है ताकि दुनिया दे नाल इन्ना मोह ना करिए।

सुंदर अखाड़े रण में जिते पवाड़े। हर इंसान यह चाहता है कि मैं किसे ना किसे ते हुक्म चलावा, मेरी हुकूमत होवे, दुनिया मैनू सलाम करे। ते इंसान लड़ाइया जितता है, तरक्या करता है, बड़ा कुछ बना भी लेंदा है। ये भी कहता है हों मारो हों बंदो छोड़ो, मुख ते एव बबाड़े। मुख कहते ने मोन, मोतू ये भी कहता है मैं जिन्हों चावा उन्हों मार सकदा, जिन्हों चावा उन्हों छाड़ सकदा। पर साहब जी कहते ने दुनिया ते हुक्म चलान वाला कल भी सलाह करके सौंदा है,